0: हेलो,
1: हेलो,
0: ठीक है
1: बोंजो,
0: ना?
1: लाइफ है अब क्या दश है?
0: नहीं सही ना, ठीक है। ऐसे
1: लाइफ है क्या रे सवारे?
0: कुछ
1: सब क्या बोना ले?
0: मेरा
1: है?
0: एंजू,
1: तू फिर रहा है जो?
0: कुछ मेरा एंजू,
1: ओके, उसी फिर रहा है जो?
0: यार
1: ऐसी
0: का
1: या वो ऐसी वो डॉलर?
0: कुछ यार का कहाँ निकलता है? हम तो कामा बकरी मिली दम पाई है, दम देखा है ना सच्चे
1: तो
0: मैम। तो कौन सा ऑफर करा दी है राजी बैंगो? नहीं मोबाइल सिम मैम भी चाहेंगे।
1: बकास यूसुफ
0: मैम भी कौन निकाल दिया था वो नंबर कौन है? न्यूयॉर्क का जी मैम भी चाहेंगे। मैम भी चाहेंगे ना तो कौन
1: आ सोफो मैं गुम मैं फोफेन
0: है? न्यूयॉर्क
1: दवाशी दवाशी
0: न्यूयॉर्क नंबर कौन है?
1: ना बाबा से
0: अपन बकाया दे चांसानी ये लम्मा दे लम्बा तो मैं यावनी ये बनी उसके पहले
1: तो वो कैसे उसूला
0: नंबर आ रहा है
1: मैं दे शरीफ
0: ना यंबो इतने सांग ऑन दे मामा मामा
1: है
0: क्रेज़न
1: क्रेज़ना
0: क्रेज़न इतने सांग ऑन दे मामा मामा ओ
1: हाँ मामा माँ ए मोन ड्यू सुते
0: एलेक्सो
1: ओके मर्सी बोकू
0: Ah
1: Toh, ene ni ene efa bouk moun.
0: Mwen akolo iti moun.
1: Ami, mef men yon mwen ek chashi fa mè ya.
0: Ami yo. Mwen akolo iti moun.